0: गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी लाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओहकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

विवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान।

गए मसकत खार, नानक थे मुख उजले केती छुटीना, जिनी नाम ते आया गए मसकत खार, नानक थे मुख उजले केती छुटीना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.

0: तेरा नाम सत्य है श्रीवा
1: पौड़े वड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सबके तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर माण महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर देस है जत कहता नानक दासन दा तुद आ गए बिनवता
0: सलूक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवसे रात दोई दाई दाया खेले सगले जगते

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मातो एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक ना जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस गो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दो तगा बहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन काओ। से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ।

मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाए नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक

0: तन मन देव हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदा वैताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पा

कुर्मान तेरा सिर ऊपर, फिर ना करत विचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तुझ ते निस्तार। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस धरो के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का, जियाए पावे मार। कह कबीर गुलाम कर का, जियाए पावे मार। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तहर का द्वार। मात हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। सूरा सो पहचानिया, जो लरे दीन के हे तो। पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छाड़े खेत। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत। सिर साहा पात साहु, निह चल चौर छत। डिठे सबे थाव, नहीं तुद जेहया। बदो हो पुरख विदाता, ता तू सोहया। वसदी सगने अपार, अनूप रामदास पुर। हर हां नानक कसमल जाए, नाये रामदास सार। अंदर सच्चा ने हो लाया, प्रीतम आपना तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी। नूर अरसहु कुरस।

सौराठ महला पंजवा ऐथा ओथा रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप रखे काट काट शब्द सुपाखे ऐथा ओथा रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप रखे काट काट शब्द सुपाखे गोरे।

हम अवगुण परि एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सोह कुर सोह।

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे प्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड विस्मादरा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला।
1: कुदरत दिस है कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालियां काशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण तेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत

ही सिद्ध ना हो है। नचन कुदन मन का चाओ, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना।

दीपालोआ मंडला खरवन खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पुजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कैस माले सबना जिन करता करना किया चिंता पी करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी।

लख तप उपर तीर्था सहजोग बेबान, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सात

छुटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर साध भरिया ते पीवे संत करह मन मजन पुब जिनो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे।

0: प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट्ट सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुट्ट मत माता संतोख पिता सर सह समायो आयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तें जगत उदारन पायो।
1: जगत उदारण नव निदान भगते पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज त्रोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पै सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।
2: सेज सदा सह छावान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरै तो सहज सरोवर भाव।

0: सतगुरु नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो, तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तार, सब दो रिद विचार काम क्रोध खोवै जियो, जियन सबन दाता गम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सोवै जियो, जाको देखत दरिद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो, सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो,
1: धर्म करम पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै, शब्द सार एक दिवदाई है, पुन जाने को तेरा अपार, निरपो निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है, परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार, जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है, मन प्राणी मुगद विचार एह निस जप, धर्म करम पूरे।

भए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अर सो कुरसो चटिए तोद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिला

साम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे आप भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्रास्त जाहे नानक तौ मोखंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं बेद अथर बन हुआ नाउ खुदाई अल्लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे

0: की सच्चाई का कराए सी तो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म बनाए सी हुक्म मन्ने होवे प्रमाण तक कस्मे का महल पाए सी कस्मे पावे सो करे मन तंदया सो बल पाए सी
1: ता दर गए पैदा जाए सी ता दर गए पैदा जाए सी।

कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहे भरपूर। मथा टिक्का तेर धोती का खाई, हाथ छुरी जग कसाई, नील वस्त्र पैरों में प्रमाण स्थान ले पुजे प्राण।